0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Eh, suno. सबको तरसाने मोहल्ले में आग लगाने अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली